नमस्कार तिसहि को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो वध कियो।

0: अर्जित द्वार उभरै तित लिहु उबार कि महाराज संसार विकारां दी अग करके जा माया दी तृष्णा दी ईर्खा दी अग करके सड़ रहा है। कृपा करो इस अग तो सानू बचा लो। साडा जीवन भी कितने इस अग दे विच सड़ ना जावे, असी सड़ के छुआ ना हो जाए। ये गुरु दी रहमत है, गुरु दा तरस है। इस भयानक समय दे विच भी महाराज ने दया करके अपनी गोद बख्शी है। गुरु घर दी हजूरी रागी भाई बलविंदर सिंह जी बड़े प्यार दे नाल आप जी नूं गुरबाणी की उत्तम श्रवण करवा रहे सन। सुआ गुरु की अत्यास दे नाल सांझ बनाइए। कल दे दीवान विच आप जी ने लड़ीवार गुरु की अत्यास दी कथा दे विच ये प्रसंग श्रवण कीता सी। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दीवान दी समाप्ति तों उपरंत जदों महलां विच आए ने ना, माता गंगा जी दे कोल आ के बैठे ने। सारी जिहड़ी गल है दिल्ली जाण दी, वो सतगुरु जी ने माता जी दे नाल सांझी कीती है। दस्सिया है कि असीं कल नूं बादशाह नूं मिलण वास्ते दिल्ली विखे जा रहे हाँ। ये गल सुन के माता जी दे मन विच बड़ा वैराग आया है, मोह पैदा होया, क्योंकि जदों दा सतगुरु जी ने अवतार धारण कीता है अज तक कदे भी सतगुरु जी माता जी तों कदे दूर नहीं गए। पहली बार गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी मात गंगा जी तों दूर चले ने। इस करके माता जी ने ये वचन कहे ने कि तुसीं गुरु नानक दी गद्दी दे वारस हो, सर्व कला समर्थ हो। तुहानूं असीं नहीं समझा सकदे, असीं अलपग जीव हाँ, साडे कोल इन्नी वत नहीं, पर माँ होण दे नाते मैं तुहानूं इन्ना वचन जरूर कहांगी कि तुसीं दिल्ली जा रहे हो, सुचेत रहना है, सावधानी दे नाल विचरना है, क्योंकि दुश्मन बहुत शातर है। वो मौका पा के हमेशा ही तुहानूं नुकसान पहुंचाउण दा यतन करेगा। इस करके उस दा विसाह नहीं करना, सुचेत रहना है, सावधान रहना है। इत्यादिक माता गंगा जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे नाल वचन कीते ने, कहा कि बहुता समां ना लायो, छेती वापस आउण दा यतन करियो। ये सारी जिहड़ी कथा है आपां कल दी दीवान विच श्रवण कीती सी। इस तों अगे जिवें प्रसंग आरंभ हो रहे ने, आओ बड़े प्यार दे नाल उस कथा नूं श्रवण करिए जी।
1: श्री हर गोविंद सुन जननी ते।
0: गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी अपनी माता गंगा जी दे वचन सुन करके
1: धीरज दीन भाख सबरीते।
0: चंगे तरीके दे नाल सोहणे वचन कह के माता जी नूं तीर

जागे प्रभु सम भावना व्यापे प्रभु के सम दुख न संताप प्रभु के सम साध के संग सर्व न धन नानक हरंग प्रभु के सिमरन रित सिद्ध नाम निरत हो प्रभु के सिमरन ज्ञान ते अंत तत्व बोध

छोड़त नहीं कोट लख बाहि। नाम जब तक तह पार पराह अनक विघन जहा संकार हर कनम तत्कार उद्धार अनक जोन जन्म अमर जाम नाम जब पाव विश्राम। हाओ मेरा मन कवहा तो हर कनम कूट पाव को ऐसा नाम जप मन रंग नान पाइया साधक संग जिह मार्ग की गण जहन को सा हर कनम भ संग तो सा जिह पैड महंत गुबैर हर कना संग जी यारा जह पंथ तेरा को न संजानू हर कना धन अर पछानू जह महा पयान तब वह काम तह हर के नाम कितम प्रशान। जह त्रिखा मत जा कर खै तह नानक हर हर अमृत पर खै भक्त जनक भरत नाम संत जनक मन विश्राम हर कना दास जूठ हर कना मधुर जनक कूट हर जह करत संत धन रात हर हर अवख सत कुमार।

प्रकाश ब्रह्म ज्ञान का मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञान का नाह अपमान ब्रह्म ज्ञान ऊचते ऊचा मन अपने है सब दिन ऊंचा ब्रह्म ज्ञान से जन पाए नानक जन प्रभाप प्रिय ब्रह्म ज्ञान सकल जिन नया तुम्हरा ब्रह्म ज्ञान जीना ब्रह्म ज्ञान के सब ब्रह्माया ब्रह्म ज्ञान की का शुभरा नाम पाया ब्रह्म ज्ञान सदा समदर्श ब्रह्म ज्ञान की दृष्ट अमृत बरस ब्रह्म ज्ञान बंधन तुम मुक्ता ब्रह्म ज्ञान की नबल जुगता ब्रह्म ज्ञान का भोजन ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञान एक उपराह ब्रह्म ज्ञान का नहीं बना ब्रह्म ज्ञान का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञान पर उपकार ब्रह्म ज्ञान का नाह तंदा ब्रह्म ज्ञान ले दावत बंदा ब्रह्म ज्ञान का हो ये सुफला ब्रह्म ज्ञान सुफल उफला ब्रह्म ज्ञान संग सकल बंधार नान ब्रह्म ज्ञान जप सकल संसार ब्रह्म ज्ञान का एक रंग ब्रह्म ज्ञान का बस प्रभु संग ब्रह्म ज्ञान का नाम आधार ब्रह्म ज्ञान का नाम परवार ब्रह्म ज्ञान सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञान अहम बुद्ध त्याग तो ब्रह्म ज्ञान का मन परमानंद ब्रह्म ज्ञान का कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञान सुख सहज निवास नान ब्रह्म ज्ञान का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म

दूसरा श्रेय का स्वामी क्रीड़ा भी से अंतर्जाम जो पावे सो कार करावे नान दृष्टि अवर न आवे कहु मान उपति क्या हुई आवे जो धक पावे सो ही करावे उसके हाथ हुई न सब किसे लिए जो धक पावे सो ही करिए अन जानन तो भी क्या महाराजा जी जानन तो अपना बचाए परम कुला देह देहतावे न मुख महिचार कुंड करावे।

आकाश संग्रह जाव बहुदस कर नकूपर कर सुपर पितरता को बना सब तु आप जाने प्रबंध फिर मैं हुए जय बसमंद कह न बद आप अहंकारी तनम रह तो फिर खुआर गुरु प्रसाद जा को मट आप मैं सोजा नानक दरगह प्रवान कूट कर्म कर अवतारी श्रम पाव सब बिरथ अनक तपस्या कर अहंकार नर सब फिर फिर अवतार अनक जतन कर तुम हिंद्र हर दरगह कह कैसे गवे आप सकाओ जो परा को है तो सब लाइन निकंडा वे सर गुरी जा का मन होए कहना अनुता के निर्मल सोई जब लग जाना मुझ ते काश होए तब सकाओ सुख ना ही कोई

सर्वस्व कोई बड़ भाग्य है प्राप्त हुई कर्ण क्रमनापी अब सदा सदा नानक न जाय कर्ण क्रम कर्ण हार उसका हास कहा विचार जैसे दृष्ट करे तैसा हुआ पिया पाप सोई।

जगत संगत जम ते नहीं छुटै। संत का दुखन सुख सब जाय, संत का दुखन नरक में पाय, संत का दुखन मात होय मरिन, संत का दुखन सुबह दिहिन, संत

संगत नहीं मिलाई। संत का दुखिया तो बीज ते टूटा है, संत का दुखी तो काज ना पा उचै, संत दुखी को दयान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर दे त्रोत है, जो सास बिना मृत किलो था। संत के दुखी की जड़ किस ना है, अपन भी जापे ही काय ही, संत के दुखी का वरण रख नार नानक संत भगत नहीं उबार, संत का दुखी यूं वेल लाए, ज्यो जल भी हून मछली तड़ फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, ज्यो पाव की धन नहीं त्रापे, संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यो गुआड़ तेल खेत मा हिंदू हिला, संत का दुखी धर्म ते रह तो, संत का दुखी सदम थे कह तो, करत नंद का दुखी पया नानक जो भाव सुई थिया, संत का दुखी विकट रूप हुए जाय, संत का दुखी का दरगाह मेरा सजाई, संत का दुखी सदा सह

आप है, अपने दासों जो बढ़ाई, अपने सेवक का नाम जो पाई, अपने सेवक के आप पात्र रखा था कि जात में पूरे ना लाख है प्रभु सेवक का कुव नाम का विचार प्रभु से पूछ देव जे जो प्रभु अपने सेवा लाय नाम सो सेवक देह देह प्रगटाया नीति की महाकाल राख है पशु कर लश्कर को लाख है

दरसा सपा मिटावे और श्याम सगरी शाड़ देह जन के दूसरी वाला गाम जाना हुई तेरा नानक देह जन के पूजा हो सात बारह श्लोक सात पुरुष जन जाने हैं साधु पदक का नाम दुख का संग से पुत्राए नानक हर गुण गावे पदी साधु गुरु से करे प्रत पार से उका गुरु सदा दयार से के गुरु धर्म तुम्हारे हरा गुरु वचन हर नाम उतरा साधु गुरु से के बंधन काटा गुरु का सुख विकार के आटा सब से नाम तान जी गुरु का सुख उठ पागी है।

जीवन किनारा पाई अनुपाय करता बंधन नियत कर है चरण कमन हृदय सिमर सतगुर हरि सतगुर अपने नानक जय प्रसाद अस प्रभु जपने इहो हर रस उपावे जन को अमृत पीवे अमृत होय उस पर का ना कदि विनाश जय कमन प्रगट गुणतास आठ पैर हर का नाम लिय सह जपदी स सेवक दिय मोह माय का संग लिय मान महाराज हर हरि कांत कर दीपक प्रकाश नानक परम मोह दुख तह दिनास तब तुम ठाण वरदाय अंत पै दुख नाठी पाई

सुबर परि प्रेम रास रंग उपजा जाऊ साधक संग परि सन्नान सब त्याग अंतर प्रकाश आनंद लेवला गुड पाग जपया प्रभु सोई नानक नवरति सुख होय सेवक मनसा पूरी भय सात करते निर्मल मात्र जन को प्रभु हुयो दयार सेवक न सदा ने हर बंधन काट मुक्त जन पाया जन वरन दुख ब्रह्म गया सुपन सरदा सब पूरी रव रहया साध संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाय नानक भक्ति नाम समाई सुखम बिसरै जि कार न पाना सुखम बिसरै जि किया जाने सुखम बिसरै जिन सब किस दिया सुखम बिसरै जि जीवन जिया सुखम बिसरै जि अगन मह राख।

जगदीश दह शाल शत्र लगत कहो की स जह जोत स्वरूप जो संग समावे दह किस भूख कौन द्रवताव करन करावन करना हार नान कर दिखा नाह समाय जब अपने सुबापन संग बनाय युताप कौन वाय बा मित्र सुत पाय जह सर्व कला या पर बीन दह वेद देव कह गोचियन है

सेवक सेवा हार जंजार विकार ते रहते राम नाम संरसन कहते कर प्रसाद दया प्रवत हरि नानक निर्वही के भंवारी प्रभु व्यवस्था करो संत मियत सावधान एकाग्र जीत सुखमनि सहज गोविंद गुण राम जह मन बस बोधन धान सर्वेच्छा ताकि पूर्ण हो प्रदान पुरख

सुकटल गुर सेविए अनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

हरण ज्यों सिर दे मन तन आगे राख के उबे सेव करे हस्ति सिर ज्यों अंकस है हरण ज्यों सिर दे

असंख जाप असंख भाव असंख पूजा असंख ताप ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पाकसार असंख मूल लबलाहे तार कुदरत कवन कहम विचार वारिया न जावा एक बार जो तुत भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार।

कर जाहि। असंख कूड़े आर कूड़े फिराहि, असंख मलेश मल पाख खाहि, असंख निंदक सिर करह पार, नानक नीच कह विचार। वारिया न जावा एक बार, जो तुद पावै साई भली कार, तुसदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव गम अगम, असंख लोह असंख कह सिर पार हुए। अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखाण। जिन एह लिखे ते सिर नाहे, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे। जेता कीता तेता नाव, विणना वै नाही को थाव, कुदरत कवन कहं विचार। वारिया ना जावा एक बार, जो तुद पावै साई भली कार, तुसदा सलामत निरंकार। भरिया

को जाय हुन तीर्थ तब दया दत्त दहान जे को पावै तिलका मान सुनया मनया मन कीता भाउ अंतरगत तीर्थ मल नहाउ सब गुण तेरे मैं नाहीं कोए विण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आस बाणी बरमाव सत सुहान सदा मन चाहो कम सुवेला वक्त।

अंत न पाए जाए। इहू अंत न जाने कोए, बहुता कहिया बहुता हुए। वड्डा सह ऊंचा था, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव। एवड ऊंचा हुए कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। जीव डाप जाने आप आप, नानक नदरी करमिंदा। बहुता कर्म लिखिया न जाए, वड्डा दाता तरना तुम आए। केते मंग है जोद अपार, केते अगणत नहीं विचार।

धर्म बंध खलासी पाणै होए हो राख न सकै कोई जे पु खाए को आखण पाए ओ जाने जीतिया मह खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे के जिसनु बख्शे सिफत सालाह नानक पातशाही पातशाह अमल गुण अमल व्यापार अमल व्यापारी अमल भंडार अमल आवे अमल लै जाहे अमल पाए अमल समाहे अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल नीसान अमुल करम अमुल प्रमाण।

गोपित गोविंद आख ईश्वरी आख सिद्ध आख केते कीते बुद्ध आख दानव आख देव आख सुर नर मुन जन सेव केते आख अखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे।

एक है, फिर एक है भुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्त निदाने नमो देव देवे भेदी अभेदे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व भवणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगिया नामे समस्ती स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ती प्रभूते कलंग गंग बिना नेक लंके स्वरूपे नमो राज राजेश्वर परम रूपे नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे नमो राज राजेश्वर परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षीय परमी अभोगी अभुगते नमो जो योगेश्वर परम जुगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो स्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्र सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा शुद्धा बुद्धा बृहदकर्ता अदो ऊर्ध्वाधंग अघं ऊघर्ता परम परम परमेश्वर पुष्पाल सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयाल शेदीये दियनाम अकाम समस्तोपराजी समस्तस्तताम तीरा जोर चाचरी छंद हो जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं अपीश है पुजंग प्रयात छंद अगाते अबाते आनंदी स्वरूपे नम सर्वमाने समस्त निदाने नमस्तु नाथे नमस्तु प्रमाथे नमस्तु अगंजे नमस्तु अपंजे नमस्तु अकाले नमस्तु अपाले नम सर्वदेशे नम सर्वपेशे नमो राजे नम सार साजे नम साहे नम माह माहे नम गीत गीते नम प्रीत प्रीते नम रोग रोखे नम सर्व नम शोक शोखे नम सर्व रोगे नम सर्व भोगे नम सर्व जीतंग नम सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञान नमो परम तान नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्र नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृषंग नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्त प्रसिजे कृपाल स्वरूपे कुकर्म प्रणाशी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धंग निवासी चरपट शांत त्वया प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्म अलह कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वं प्राण सर्वत्राण सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पीवं सर्वं

सर्वकाल सर्वकालक सर्वकालक सर्वकोपन कालो जत्र तत्र विराज्य ही अवतु गुरु प्रसालम नाम ठाम ना जात जागर रूप रंग न रेख आद प्रभुदार मूर्ता जो नाद शेख देश और न भेद जागर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैले अनुरागम नाम काम विहीन पेखत काम हूँ नह जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानदता है एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक खेल खेल खेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव न जान नहीं जय भेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जान नहीं कहे जेव तार माद न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिर चक्र

पुरुष पार सर्व लायक सर्व काय का सर्व को प्रत पार सर्व घंता सर्व हंता सर्व ते अनपीख सर्व शास्त्र न जान ही जह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाख नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना वही वह चेत मद पार संत त्व प्रसाद गुण गान उदार महिमा पार आसन अपांग उपमा नांगन पौ प्रकाश निस्दिन अनास आ जान बाहु साहन साहु राजान राजपान आन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुभूत अंगा पापांगत मत अपार गुण गण उदार।

माया का मैं पूजंत प्रयात छंदम चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चातरी छंदम न सुत्र न मित्र न पर्व न पितर न कर्म न काय जन्म अजाय न चित्र न मित्र परे पवित्र पृथिश दिशा दृश अकृश भगवती शांधु त्व प्रसाद कथते के अशि देश के अभिज भीष के अगंज कर मैं के अभंज पर मैं के अभिज लोक के अदित सोक के अवधूत वर्ण के विभूत करण विराजन प्रवाह है के धर्म तुझा है के अशोक वर्ण है के सर्वाभरण है के जगतन कृति है के छत्रन क्षत्रि है के भ्रमण स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद अदेव है के आप अभेद है के चित्रण विहीन है के एक आदि न के रोजी रजा कर ही मेरे हाक है के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अफबुल गुनाह है के शाहान शाह है के कारण को निंद है के रोजी देहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग करी है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं करी मैं के परम फही मैं के आकला मैं के सर्व कला मैं के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेश सलाम असलिक मुदा मैं गजम सिकस्त गरीबुल परस्त बिलंदर मकान है जमीन जमान है तमीजुल तमाम रजो निदान है रिफुल जी मैं रजाय यकीन है अनेक उत्तरांग है भेद है अपांग है अजीजुल निवाज है गिरिमन खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त प्रभूत है प्रभूत प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सुलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओम आदि रूप अनाथ स्वरूप अनंगी अनाम त्रिभंगी त्रिकाम में त्रिभ त्रिभाध्य गंजे अगाध्य शुभंग सर्वभाग्य सर्व अनुराग है त्रिभुत स्वरूप है छिज है शूत है गणास है पृथुर प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह अनुक्त स्वरूप है पर जुगत अनूप है चातरी छंदम अपंग है नंग है अपेख है लेख है परम है कर्म है नाद है जुगाद है अजय है अभय है भूत है तूत है नाश है उदास है तंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिख है देख है अलेख है पेख है टह है गह है संभ है गंभ है नीन है अनाद है अनित है सुनित है जात है अजात है चरपट छंद उत्व प्रसाद सर्वहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंगयाता सर्वहर्ता सर्वंकर्ता सर्वपुराण सर्वंतराण सर्वंकर्म सर्वंतर्म सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता अर्सावल छंद उत्व प्रसाद नमो नर्गनाशे स दैव प्रकाश अनंगम स्वरूप अपंगं विभूते प्रमादं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगा स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनाम त्रिभंगी त्रिका मैं न भंगी स्वरूप सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सुत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नृसाग श्री कह मितु अमेघ है सदैव प्रवाह जय है अजय है भगवती शांतो त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है मेसु सलाम है समस्त कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसन चराग है के कामन करीम है के राज ग्रहीम है के रोजी देहंद है राज ग्रहिंद है ग्रिमल कुमाल है हुसनुल जमाल है ग्रिमल खराज है ग्रिमल निवाज है रिफुल सुकान है रासुर फेकान है कलंगन प्रणास है समस्त निवास है गंधुन गनीम है रजाय ग्रहीम है समस्त जुबा है साहिब करा है के नरगुन प्रणास है भैसकुल निवास है के सर्वगमन है मेसुरमन है तमावल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है देशुल अलेख है मेसुल अपेख है जिमिन जमा है मी कुमा है क्रिमन कुमार है के जुरत जमाल है के अचरण प्रकाश है के अमितो सुभाष है के अजो स्वरूप है के अमितो विभूत है
के अमितो पस है के आदम प्रभा है के तिलंग अनांग है के अमितो अपंग है मद पार शांत प्रसाद।

अनुच्छेदांगा समय पांग उपमा पार गातमे उदार जल थल मंड देश विषय पांडु जल थल महांतो देश विष बेयंतम अनुपव नाश त्रेत तर तुरा सुजान भव।

जग जानिया है। सर्वं पर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणाकर है, संपर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड स है, खाल खंड स है, परते पर है, करुणाकर है, जपा जाप है, थपा थाप है, कृता कृत अमृत अमृत है, अमृता अमृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, धरणी त्रित है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत अमृत अमृत है,

जब जापन है। अकरण कृत है सर्वा कृत है, कर्ता कर है हर्ता हर है, परमात्म है सर्व आत्म है, आत्म वास है, जस के जास है, पूजन प्रत छंदम।

बहुर रज दीनी कहूँ फूल राजा हवै बैठा कहूँ सुपट भयो सुंदरी कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाया चंद भव आजुगा स्वरूप स्वयं भव आवर अच्छा मेरी तुम करो सिख उबार असुख संगरो दुष्ट ते उठवत उत्पाता असगल मलेश करो रण काता जी अस्तुता शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार ते आए हैं तागे काल निकट नह आए हैं रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट रह तत्काल कृपा दृष्ट तन जाय निहर होता के ता तन को मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छाह श्वेस न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास देता है उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दार्द दुष्ट दुख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ का लेहु उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते लेहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता कल्पिक सगल देह को हरता दुष्ट दोखियों को छाय करता श्री अस्तुजा पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काल मन वांछित फल पावे सोई दुख नाथ सह व्यापत कोई अड़े।

तीरस्तद्र ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंतरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने।

जंतु पाए के संभाले सबना। जिन करते करना किया चिंता बे करनीता, सो करता चिंता करे जिन पाया जग, तिस जुआरी स्वास्थ्य।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तू जिन सचो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सच तातनी सच कमाया, सतगुरु मिले सच पाया जिन के हृदय सच वसाया, मूर्ख सत न जाननी मन।

खत्रि शब्द सूर शब्द शुद्ध शब्द प्राप्त सर्व शब्द एक शब्द देख जाने प्रियो नाम का दास है सुविंदर।

कै जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत गसम दी नूरे अरसों गुरसों चटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह

परम सत्कार जो गुरु की साजी निवाजी सात संगत जीओ हुण चार लावां दा जाप होएगा और चार ही परिक्रमा होणगियां। सुभाग जोड़ी नूं बेनती है कि जिस वक्त पहली लाम दा जाप समाप्त होवे आप जी ने दोनों ने बड़े प्यार नाल उठना है, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी नूं नमस्कार करनी है, इस पासे वालों परिक्रमा शुरू करनी है। परिक्रमा करते समय काका जी अगे अगे होणगे और बीबा जी उन्हां दा पल्ला पकड़ के उन्हां दे मगर मगर होणगे। परिक्रमा करके काका जी अपनी जगह ते आके खलो जाणगे, बीबा जी उन्हां दे पिछले पासे ते आके फिर दोनों ने मत्था टेक के बैठ जाना है। आओ गुरु रामदास महाराज जी दी पावन पुत्र रसना तो उच्चारण कीतियां हुई लावां दा जाप सरवण करिए। सतनाम

0: कमल मूल ते कवन दिष्टानी
1: जिंतु सास वास सिगारिया गर्भ कन में जनी उबारिया
0: बार व्यवस्था तुझे प्यारा है दूध पर जोवन भोजन सुख सूद
1: बिरद भया ऊपर सासन मुख प्याऊ बैठो कैन
0: इहो निर्गुण गुण कछु न बुझे बख्श लियो तो नानक सीजे
1: जे प्रसाद धर ऊपर सुख बस है सुत प्रात मीत बनता संहत है
0: जे प्रसाद पीवे शीतल जला सखदाई पवन पाव को मुल्ला
1: जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा
0: दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग

0: जो ठाकर सा सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे
1: जाकी प्यार पावे दरगा मान सारा मुक्त जान
0: सदा सदा इहो पूलन हार नानक राखन हार अपार
1: रतन त्याग कोटि संग रचा सास छोड़ तू संग मचा
0: जो षडना सो अस्थिर कर माना जो होवन सो दूर प्राणा
1: जोड़ जाए तिसका शरण करा संग सहाय तिस पर हरा
0: चंदन लेप उतारा तोए गर्द और पीस भस्म संग होए।

0: शास्त्रपदी।
1: जय प्रसाद छति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे।
0: जय प्रसाद सुगंधत तन लाभ है तिसको सिमरत परम गत पाव है।
1: जय प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर।
0: जय प्रसाद रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना।
1: जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याए त्यावन जोग।
0: जय प्रसाद पाप पटंबर हटा रहे।

0: मन सुखाल हर हर जस कहत।
1: जय प्रसाद तेरे सकल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके।
0: जय प्रसाद गुना मुख जय मन साथ साथ गुरु प्रभु के।
1: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक ताकी भगत करे।
0: जय प्रसाद भूखन कारी जय मन ते सुनत प्यो आस सीजै।
1: जय प्रसाद अश्व हस्त असवारी, मन तिस प्रभु को कभू ना बिसारी।
0: जय प्रसाद बाग निरत रहना, राख रोई प्रभु अपनी मना।
1: जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठत सत सह त्याई।

0: चीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पाया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी

0: सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग।